आशीर्वाद भर दो बिना झोली सब को लंगड़ा के शक्ति दो चलने को आशीर्वाद भर दो